हर हद मेरे जीने का तू मकसद मेरा चैन सकूं सब ले गई समझू मेरी अखियां बिच दे।

0: किशन गंदे सॉन्ग यार।
1: फैंस की पागल है ये।
0: क्यों?
1: ट्रोल हो जाएंगे हम लोग, ट्रोल।
0: बट व्हाई इज आइकॉनिक?
1: फिल्म में हमारे सारे गाने ओरिजिनल हैं, कहे को पंगा लेने गए, छोड़ दे। आजकल जनता ना बहुत पिक्चरस हो गई।
0: इमेजिन हाउ द सॉन्ग वुड लुक इफ एली कुणाल एंड दिया डिड इट। आई वाज इट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग नाउ, यू आर गेटिंग मी।
2: यू गाइस वांट ऑडिशन? या
1: ट्रोल हो जाएंगे, मत करो।

0: Yes. Killed it.
1: आगे ले गया? ट्रोल हो जाएंगे. Not at all.
0: दीनू, डाल दे. ट्रोल हुए तो हो जाएगी.

0: शुक्ला गंडकी एफएम 97.6
1: शुक्ला गंडकी टाइम चेक
2: यति बेला रातिको ठिक 8 बज्यो।